0: हाँ जी, तुसी हुणे सुणी सीगी ते हुण पेश करन जा रहे इक रिपोर्ट। इह रिपोर्ट है केरलम जित दे सबक। अजिहा जापदा है कि जिवें कांग्रेस नूं चोणां विच हारन दी इन्नी आदत पै गई है कि जित्तण तों बाद भी उह फैसले लैण विच काफ़ी जदोजहद करदी दिसदी है। हाल ही दियां विधान सभा चोणां दे नतीजिआं विच केलम दी शानदार जित ने पार्टी दी डुबदी साख बचा ली है। इस दे बावजूद कांग्रेस नू वी डी सतीशन नू मुख्यमंत्री नियुक्त करन लई पूरे 10 दिन लग गए। ये सच है कि हाई कमांड कोल विकल्पां दी कोई कमी नहीं सी, क्योंकि के सी वेणुगोपाल ते रमेश चेनीथला वर्गे तजर्बेकार आगू भी इस दौड़ विच सन, पर मुख्यमंत्री दे नां दा ऐलान करन विच होई बेलोड़ी देरी ने अंदरूनी सहमति बनाउण विच कांग्रेस दी पुरानी कमजोरी नूं मुड़ जग जाहर कर दिता है। इंज जापदा है कि स्टेशन दी चोण करके पार्टी ने पुरानी दर्जाबंदी दी बजाए सियासी कारगुजारी नूं तरजीह दित्ती है। पिछले 5 सालां दौरान उह केरलम विच विरोधी धिर दी सब तों प्रमुख आवाज़ वजों उभरे हन, जिन्हां ने भ्रिष्टाचार ते माड़े शासन दे मुद्दिआं ते लगातार खब्बे पक्खी सरकार नूं घेरिया। सतीशन दीआं तिखियां विधानक दलीलां ते जोशीली चोण मुहिम ने 2021 तों बाद कांग्रेस दी अगवाई वाले यूनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट विच नवीं रूह फूकण विच मदद कीती। सब तों महत्वपूर्ण गल इह है कि उह दखणी सूबे विच पार्टी दा अक्स, एक नौजवान ते वधेरे दृढ़ इरादे वाली पार्टी वजों पेश करन विच सफल रहे हन। राहुल गांधी दे करीबी मन्ने जांदे वेणुगोपाल ने हाईकमांड दे उस फैसले नूं निमरता सहित स्वीकार कर लिया, जिस दा उद्देश पार्टी दे सूबाई ते राष्ट्री हितां विचकार संतुलन बनाउणा है। साल 2027-28 विच होण वालियां विधान सभावां दीआं चोणां ते 2029 दीआं लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र केंद्री पद्धर ते जथेबंधक भूमिका विच उहनां दी निरंतर मौजूदगी कांग्रेस लई बेहद अहम है। पार्टी हुण वेणुगोपाल ते चेनीथला तों इह उम्मीद करेगी कि उह सतीशन नूं पूर्ण सहयोग देण, क्योंकि सतीशन दे सामणे चुनौतियां दा पहाड़ खड़ा है। नवीं सरकार नूं उच्च साखरता दर दे बावजूद फैली बेरोजगारी, वधदे करजे, बुनियादी ढांचे संबंधी चिंतावां ते समाजिक भलाई दीआं उम्मीदां वर्गे गंभीर मुद्दिआं नूं हल करना होवेगा। इस दे नाल ही UDF दे सहयोगी दलां विच एकता बनाई रखणा वी इक वड्डी चुनौती होवेगी। कांग्रेस नूं चाहीदा है कि उह सुशासन राहीं दक्षणी भारत विच अपना दबदबा स्थापित करन लई इस सुनहरी मौके दा भरपूर फायदा उठावे। इसी प्रोग्राम दे विच इक रिपोर्ट ते लओ हुण प्रोग्राम नूं अगे लैके चलदे आं। आप जी नूं सुणाउंदे आं इह गीत।
1: आला पुत, तत्ती तत्ती चाह पी।
2: आ चक अखबार। फौज दी भर्ती 9 तरीक तो पटियाले विच शुरू।
3: लै भी जवाना, खिंच लै तैयारी। सच्ची शिंदिया, बहुत दिल करदा है कि तू मेरे सामने फौजी वर्दी च खड़ा होवे ते मैं तेनूं खिंच के सलूट मारा।
4: खबरदार, जे फौज दी गल वी कीती तां तुसीं की लभ लिया फौज चो? सारी उम्र साढ़े तो दूर रहे, जवान जहान पुत गवा लिया। बस इहनूं मैं किते नहीं भेजणा। अज तो बाद किसी ने फौज दी गल नहीं करनी। सुणदा भरा तू इहनूं?
3: किहो जिहियां गल्लां करदी है सरजीत कुरे?
5: तेरे नाल मेरा तां सीना पाटण ते आ जांदा है जदों कोई कहिंदा है आओ जांदा है शहीद जगदेव सिंह दा बाप। नाले चुल्हे चढ़ाउणी इहो जी जवानी जिहड़ी देश दे काम ही ना आए।
4: हाय हाय पुत, की हो गया तैनूं? ओ मर जाना प्रीतम सिंह थानेदार नहीं हैगा, रोज मैनूं तंग करदा रहिंदा सी, पर अज मैं उहनूं सबक सिखा ही दित्ता।
6: की करता तूं?